0: हजुर अपूर्व आवाज इटर्नी एफएम 92.5
1: बॉलीवुड अनलिमिटेड दैट्स माय सॉन्ग बैक टू बैक ओनली ऑन डॉट एफएम 92.5

0: 92.5 megahertz. You're listening to
1: इटहरी थाना अगाडि विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पूर्वाञ्चल सामुदायिक पोलिक्लिनिक प्रणालीमा
2: हाम्रा 24 घण्टा सेवाहरू
1: बिरामी जाँच सेवा
2: आकस्मिक उपचार सेवा
1: डिजिटल एक्सरे सेवा
2: दैनिक बिहान भिडियो एक्सरे सेवा यूएससी
1: 24 घण्टा ल्याब फार्मेसी सेवा
2: प्रत्येक दिन बेलुकी 4 बजे डाक्टर शम्भु शाह
1: डाक्टर सुनिल शाह बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म
2: दैनिक प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा डाक्टर सीमा गुप्ता बिहान 8 बजे
1: डाक्टर मिलन केसी हाड जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा कोशी अस्पताल विराटनगरबाट
2: दैनिक रोग विशेषज्ञ सेवा डाक्टर राजेन्द्र राठी बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म
1: डाक्टर प्रविध गजुरेल नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा सेवा र उपचारका लागि पूर्वाञ्चल सामुदायिक पोलिक्लिनिक प्राली इटहरी थाना अगाडि
2: फोन नम्बर 0525909888

0: बस उनको मां या लुहावा चलता, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलता, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हर त दिए के होलन है ना, हो ती याद हरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: तकाने सामी सिते।